बिजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार और बिहीबार बिरामी जांच कर आने भाई छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामी विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाट जोड़नी सेवा टूटल हाट जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फैले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: ए बा आई गई क्या आज तो पहिला नौकरी को पहिला महीना तनखा खाईकन आएकी होली मेरी चेली
2: तनखा खाईकन होइन बुवा तनखाले भोलिका दिन कि ढुक्क पारेका नआएकी छु हो भने बुवा पहिला महिनाको तनखा पाउने बित्तिकै मैले आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाएकी छु। सिटिजन लाइफमी त कसा राम्रा राम्रा योजना रहेछन्। भाइका लागि बाल भविष्य योजना, तमिरे आमाका रिटायरमेन्टका समयका लागि घातक रोग सुविधा सहितको पेन्सन योजना, वाचि मेरा भविष्यका लागि सेभिङ ग्रोथ प्लान पनि रहेछ। तर पहिला महिना तनखाले सबैको एकैचोटि हर्न सम्भव भएन, त्यसैले अहिले आफ्नो जीवन सुरक्षित गरिकन सुरु गरे।
1: ठिक गरिबा, आफैबाट सुरु गर्नु पर्दछ। हाम्रा पालामै त यसो गर्नु भन्ने थाहै थिएन, तर तमीहरूका पुस्ताले त समय अनुसार स्मार्ट डिसिजन लिइकन भविष्य सुनिश्चित गरिकन अगाडि बढ्न लागेका छन्।
2: बुवाका अनुभव र मेरो सचेतना मिलिकन हाम्रो परिवार झिक सुरक्षित हुन्छ त, हैन बुवा? सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स, जहाँ भरोसा र भविष्य सँगसँगै हिटो छ। झिक्क कुरा थाहा पाउनका लागि हाम्रा बिमा गर्ने मान्छे नजिकैका शाखा कार्यालय वा फोन नम्बर 01-5970-217 मी सम्पर्क हरे।
3: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: का हुई कमल अहिने बुक खाइल बाटो त
1: एरि न काका आइ फुला टुरे बारी मा गेल रही तपो का देली बीस निकाल देवी की कई के लेके आयल बाटो
0: सपो कटक बीस तक उपचार कर त सर्वदम सब उपचार केंद्र में ले जाई पठा कहूँ कमल भाई वहाँ दक्ष तथा तालीम प्राप्त चिकित्सक हूँ दिखा सपो कटक हो कि नहीं हो के पट्टा लगा ख सर्पदम से उपचार में प्रयोग है ना एंटी भेनम से उपचार कर
1: सर्पदंश उपचार केन्द्र विषय में मैं फिर सुनल तो रहू
0: तर कुछ दिन कही आना तुरंत उपचार केन्द्र ले जा रही नेपाल सरकार सर्पदंशक उपचार कर एंटी भेनम समेत निःशुल्क उपलब्ध करे था हस्तक चिंता नहीं पड़त
1: भाई ना तब ना तुम कुछ फिर नहीं हुई मैं एम्बुलेंस आना फोन कर सकली बात
0: एम्बुलेंस आ पुगना समय लागे के था मर छवा संदेश मोटरसाइकिल में बैठा कर तुहन उपचार केन्द्र में ले जा दी रे बाबू संदेश बाहर आता
2: सर्पदंश प्रभावित जिला में बेरमेन का समय में जो उपचार के ख जान जोगिना उद्देश्य ले सर्पदंश उपचार केन्द्र संचालन में बा ई उपचार केन्द्र में सर्पदंशक उपचार निःशुल्क हुई था सापन का कटाई ले मनन का मृत्यु न हो सरकार सर्पदंश उपचार में प्रयोग होना एंटीभेनम निःशुल्क उपलब्ध करेलबा आपन लखरहल सर्पदंश उपचार केन्द्र संपर्क नंबर ठहरा पठा सर्पदंश संबंधी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकी पता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर सेट
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
4: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकारी गरौं।
5: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
6: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
5: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
6: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
7: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 98584899213, इमेल ocmcticapur@gmail.com।

0: ए रुक रुक रुक
1: के भयो किन कराएको यस्तो
0: दाई यस्तो पनि हुन्छ र 30 दिन सम्म अनलिमिटेड रे
2: डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड यति मात्र होइन लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभीज को फ्री एक्सेस पनि
0: हो र हो नि एनसेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड
3: आजै यो सुपर भ्यालु प्याक एस्ट्रिक 123 ह्यास डायल गरी वा एनसेल एप मगाइ लिनुहोस् एनसेल नेपालकै लागि
4: बाबु ए बाबु काल मनिष मेडिकल में जाइस तो
5: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू
4: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
5: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तू मैं अब भी जाए
6: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
7: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर।

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जै बो पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान वर्जन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्टफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426
3: के तपाईलाई थाहा छ
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
3: हो र
4: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
3: के छ त विकल्प
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन
4: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
3: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
4: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली

0: कबू कापी रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटा का आजी था, काकना हो काकना हो। बाबा फिर उस टपाटीन गटीलो ठाउं से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं है रहे।
1: ओहो, ये बुढ़ान लिख में का हुई थी, जरा भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई? कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिक थो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था?
0: कहाँ से लन बहुत तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला अन लबाती ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरा से बातें ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर
4: अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको दोस्रो तेस्रो र चौथो शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ
3: ससानो कुरामा तनाव हुने
4: बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने
3: कुलटमा लाग्ने
4: छटपटी हुने
3: मुटु धेरै ढुकढुक हुने
4: जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही जेठ 23 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला।

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहाँ उक्रम स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब वे अपने खुकरी सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो माफे सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से। कर्णाली लदिया के किनार में सामुदायिक बनुआ में लदिया कटान के चपेटा में वर्षेनी 100 हेक्टर बनुआ क्षेत्र कटान हुई थी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी टिकापुर के नगर सभापति में इंजीनियर रविन्द्र विष्ट चयन। सामुदायिक पुस्तकालय के अध्यक्ष में जगन्नाथ प्रसाद रिमाल। टिकापुर नगर प्रहरी सवारी चालक फायर फाइटर और सरसफाई कर्मी हुकरण। आगलागी नियंत्रण के सामग्री संचालन संबंधी तालीम प्रदान। और रानी जमरा कुलरिया सिंचाई अंतर्गत के बनल शीत भंडार गृह संचालक समिति के शपथ ग्रहण। पूरा खबर। कर्णाली लदिया के किनार में सामुदायिक बनुआ में कटान हुईती रलक ओर से जोखिम बढ़ती गेल बा। पर्सनी लदिया किनार में सामुदायिक बनुआ कटानी हुईती गैलक ओर से लदिया कटान नई वन संरक्षण के लाग भारी चुनौती रलक सामुदायिक बनुआ हुकरा बटैतियाल बाटे। कर्णाली कैलाली के कर्णाली लदिया किनार के सामुदायिक बनुआ लदिया कटान के चपेटा में परल बाट। उसको लदिया किनार के सामुदायिक बनुआ कर्णाली लदिया में ऐना 12 वर्षेनी कटान हुईटी जैलक ओर से यहां के सामुदायिक बनुआ लदिया के कटान के चपेटा में पड़ल के हो। वर्षेनी हुईटी रलक कटान से सामुदायिक बनुआ है बचैना सामुदायिक बनुआ उपभोक्ता समिति हे समेत भारी चुनौती बा। टीकापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 7 स्थित के सत्ती कर्णाली सामुदायिक बनुआ में फे समस्या रहल बनुआ के अध्यक्ष जीतराम चौधरी बटुले बाटे। सत्ती कर्णाली सामुदायिक बनुआ जस्ते टीकापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 2 स्थित खोटेना भुराखानी सामुदायिक बनुआ में फे लदिया कटान के चपेटा में पर्ती रह। खोटेना भुराखानी सामुदायिक बनुआ में फे करीब 25 हेक्टर क्षेत्रफल लदिया के कटान कर सकल बा। कर्णाली के एक थोक बंगालो नई सामुदायिक बनुआ और लौटलक ओर से वन क्षेत्र में ढेर कटान हुईती रहलक बटवा गेल बा। खोटेना भुराखानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के अध्यक्ष भूपेन्द्र साउत के अनुसार फेक कटान चलती रहलक ओर से बनुआ जोखिम में पड़ती रहल बतैती बाटे। जगतपुर सामुदायिक बनुआ है फेक कर्णाली लदिया के कटान से बचैना भारी चुनौती रहल बा। जानकी गांव पालिका वार्ड नंबर 6 स्थित जगतपुर सामुदायिक बनुआ है कर्णाली लदिया के भंगालो नई दुई भाग में विभाजन करलक हो। एमना प्रत्येक वर्ष समेत हेक्टर के हेक्टर बनुआ क्षेत्र में लदिया के कटान करती गई बा। लदिया कटान हे रोकना निशेकलक खंड में सामुदायिक बनुआ के आधा हिस्सा नई ओरैलक कहती उपभोक्ता हुकरा चिंतित बाटे। असी के लदिया के कटान करती लग बनुआ हे बचैनकलाक सामुदायिक बनुआ स्रोत के समेत से नहीं सेकना रलको से सरकार से लदिया कटान रोकना तटबन लगायत के काम करना हुईलकोर से मजा हुईना सामुदायिक बनुआ के अध्यक्ष नीर बहादुर शाह के कहाईबा। कैलाली के टीकापुर लम्कीचुहा नगर पालिका तथा जानकी गांव पालिका क्षेत्र में केल कर्णाली लदिया किनार में दर्जन से ढेर सामुदायिक बनुआ बा। ऊ दर्जन से ढेर सामुदायिक बनुआ में अधिकांश सामुदायिक बनुआ कर्णाली लदिया के कटान के चपेटा में पड़ल बा। लदिया किनार में रहल सामुदायिक बनुआ है लदिया कटान से बचैनक लाग आपस लैके पहल करना हो कले से सामुदायिक बनुआ है लदिया आपने समेत आहारा बना के सामुदायिक बनुआ के नाव में मेटैना देखे रहल बा। इस विषय में स्थानीय से लैके प्रदेश और संघीय सरकार लदिया कटान रोकना काम में जुटे पाना देख पड़ल बा। रानी जबरा कोलरिया सिंचाई अंतर्गत के वनलक्षित भंडार गृह कोल्ड स्टोर संचालन तथा व्यवस्थापन समिति के पहली साधन सभा मन से निर्वाचित पदाधिकारी हुकरण शपथ ग्रहण हुई बा। जे 10 गते शुरू हुईलक साधन सभा में कोषाध्यक्ष पद के लग शुक्रवार चुनाव हुई पाछे शपथ ग्रहण हुईलेखो। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बोलती रानी जमरा कोलरिया सिंचाई कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई के प्रमुख भरत प्रसाद कड़ेल, शीत भंडार संचालन ह्विटसम परियोजना के ओर से प्राविधिक पृष्ठपोषण करना मनो संचालन काम के अगुवाई समिति से करे पर्ना बतैले बाटे शीत भंडार के 8% जत्रा काम बाकी रहलबा एमना 25% लागत सहभागिता कराके अपुग 11 लाख जुटे नफे समिति से पहल करे पर्ना कड़ेल के कहाइबा रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना के 75% किसान उकरण के 25% शहर में 8,20,00,000 रूपया के लागत में 1,000 मेट्रिक टन की शीत भंडार गृह निर्माण हुईलक हो। परियोजना के वरिष्ठ समाज शास्त्री कृष्ण उप्रेती रानी जमरा हाइड्रो पावर जस्ते शीत भंडार फे जन्मलक बटोईटी संचालन करलाक शेयर सदस्य उकरण नाफा देना चुनौतीपूर्ण रहल बटोईले बाटे शीत भंडार संचालन समिति के अध्यक्ष निरबहादुर साहस सकुजहान के सहयोग में शीत भंडार संचालन के लक्ष्य पूरा करना प्रतिबद्धता व्यक्त करले बाटे रानी जमरा कुलरिया जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष कुमार राजशाही ढेर दुख से शुरू हुईलक शीत भंडार के बाकी काम लाओ कार्य समिति से करना बटोईले बाटे साधन सभा मंच किसे अध्यक्ष निरबहादुर शाह उपाध्यक्ष में चतुर प्रसाद खनाल सचिव में धनीराम चौधरी सहसचिव में मुकेश बहादुर शाह कोषाध्यक्ष में जनक कुमारी चौधरी चयन हुईलबाट उसका खुला सदस्य में धर्मराज तिमिलसेना सिद्धराज ठकुल्ला दलित सदस्य में पदम जंग बहादुर लोहार महिला सदस्य में सोमती कुमारी चौधरी दिलू घरती मगरो सीता दंगौरा निर्वाचित हुईलबाट खोजखबरमा एक घड़ी विश्राम पासे फेर से बिसुन्ती रवि सामुदायिक रेडियो टिगापुर एफएम
1: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
2: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बञ्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588008
0: विश्राम पासे फेर से स्वागत बा टिकापुरमा नगर प्रहरी सवारी चालक फायर फाइटर सरसफाई कर्मी उक्रण दमकल लगायत के सामग्री आगलागी नियन्त्रण के सामग्री संचालन सम्बन्धी 7 दिने तालिम दैगिलबा 20 दिने देहल तालिममा टिकापुर नगरपालिकाकै आयोजना तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलाली सशस्त्र प्रहरी 7 नम्बर बैद्यनाथ वाहिनीकै प्राविधिक सहयोगमा हुईलक हो। पालिकामा हाल 3 जना फायर फाइटरबाटै आगलागी हुईलक ध्यार जनशक्ति चाहना रलकोर्से और झनफे तालिम दैगिलेको तालिममा आगलागी नियन्त्रण प्राथमिकता उपचार खोज तथा उद्धार के बारे में सिखागिल वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख निर्मला चौधरी बटोले बाटे तालिम पाइल पाछे नगर प्रहरी रीमा साउ तालिम पाछे आगलागी नियन्त्रण के काम में खटना सहज छुना बटोले बाटे आगलागी नियन्त्रण करना समेत फायर फाइटर के चन्द्रसिंह सुनार तालिम पाछे आगलागी के प्रकार पहचान सामग्री प्रयोग आफ्नो सुरक्षा के बारे में ज्ञान मिलल बटोले बाटे नगर प्रहरी के इन्चार्ज पल बहादुर शाह दमकल कसिक संचालन करना पालिका में रलक आगलागी नियन्त्रण के सामग्री कसिके प्रयोग करना सकू जाने आगी पानी सकेल सकू आगी पानी सकेल नै बुटैली सेक्ना रलक ज्ञान समेत पिलल बटोले बाटे सामुदायिक पुस्तकालय टिकापुर के अध्यक्ष में जगन्नाथ प्रसाद रिमाल चयन हुईलबाट रिमाल हे अध्यक्ष के प्रत्याशी देवेन्द्र बहादुर शाह तंक प्रसाद सन्ज्याल से उम्मेदवार फिरता लेल पासे रिमाल निर्विरोध निर्वाचित हुईल के हुए पुस्तकालय के 6ौं चुनावी साधन सभा से सर्वसम्मत रूप में लाओ नेतृत्व चयन करल बा पुस्तकालय के उपाध्यक्ष में मोहन प्रसाद उपाध्याय सचिव में दीपक बोगती सहसचिव में अमित कुमार चौधरी कोषाध्यक्ष में प्रतीक्षा चौधरी चयन हुईलबाट वस्तक खुला सदस्य में दीर्घ बहादुर तिरुवा मोहन प्रसाद शर्मा जनक बताला दीपक राज बराल निर्विरोध हुलबाटै, महिला सदस्यमा इन्द्र कुमारी उपाध्याय ओ जनजाति सदस्यमा कञ्चन चौधरी चयन हुइल समिति से जनायल बा। उसँगका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी टिकापुरके नगर सभापतिमा इन्चार्ज रविन्द्र विष्ट चयन हुइलबाटै, कलशे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी टिकापुरके कालीखुइल नगर अधिवेशन मनसे विष्ट सभापतिमा चयन कर्गिले खो। उपल्लो वायुमण्डलमा रलक न्यून चापीय रेखा के समेत स्थानीय वायु तथा पश्चिमी से लैके पूर्व समके नेपाल के नजिक रलक ओर से न्यून चापीय रेखा के प्रभाव के कारण देश के तमाम स्थानमा मौसम बदलना, वर्षा तथा आंधी हुरी चलना पूर्वानुमान करल बा। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार हाल गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत की देश के अधिकांश हिमालय पहाड़ी भूभागमा साधारण मेरके मौसम बदलल बा। कलसे तराई क्षेत्रमा आंशिक फेर बदलती रहल बा। लुम्बिनी प्रदेशमा कुछ स्थानमा मध्यम वर्षा होइती रहल बा। कलसे गण्डकी कर्णाली प्रदेश के कुछ स्थानमा फेर हल्का वर्षा होइती बा। आज दोपहर के गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश के समेत हिमाली तथा पहाड़ी भूभागमा साधारणतया मौसम बदलना बा। कलसे तराई भूभागमा आंशिक मौसम बदलना महाशाखा से जनायल बा। लुम्बिनी, कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रदेश के साथे कोसी, बागमती, गण्डकी प्रदेश के हिमाली तथा पहाड़ी भूभागमा कुछ स्थानमा मेघगर्जन सहित के पानी पर्न सम्भावना बा। मध्य प्रदेश तथा कोशी प्रदेश और गण्डकी प्रदेश के तराई के एक दुई ठाउँमा भारी पानी पर्न समेत सम्भावना देखैती बावै। अब फे कैलाली के टिकापुर आसपास वर्षा हुइती रहल बा। विश्वभर के सुर्तीजन्य पदार्थ के दिवस के विश्व के तमाम देश सचेतनामूलक कार्यक्रम के साथ मनाइजी बा। हरेक वर्ष मे 31 मा मनाइजिना यी दिवस के उद्देश्य सुर्तीजन्य पदार्थ के प्रयोग से हुइना स्वास्थ्यमा जोखिम, सुर्ती उद्योग, व्यावसायिक रणनीति, सुर्ती नियन्त्रण केलाक समेत विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से कर्तिरलक प्रयास तथा स्वास्थ्य जीवन यापन ओ भावी पुस्ता के संरक्षण के लग आवश्यक कदम के बारे में सचेतना फैलैना कहलबा। WHO के सदस्य राष्ट्र सन 1987 में विश्वव्यापी रूप में सुर्तीजन्य पदार्थ के महामारी तथा इससे समेत हुई सेकना समेत मृत्यु रोग प्रति ध्यानाकर्षण समेत करैना यी दिवस के शुरूआत कर गेलक हो। सन 1987 में विश्व स्वास्थ्य के सभा से पारित करला की प्रस्ताव WHO से 40.38 से सन 1998 माह समेत अप्रैल 7 विश्व के धूम्रपान रहित समेत दिवस के रूप में मनैना निर्णय करल रह। खोजखरमा एक गरी विश्राम, विश्राम पासे फेरसै बिसुन्ति रवि सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM।
3: जानकी गाउँपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना।
4: नेपालको संविधानको भाग 3 मौलिक हकको धारा 39 अन्तर्गत बालबालिकाको व्यवस्था भएको र बालबालिका ऐन 2075, बाल श्रम ऐन 2056, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 समेतलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन 20 वर्ष मुनिका किशोर किशोरीहरूले विवाह गरे गराइएमा भागे भगाएमा दुवै पक्ष कानून बमोजिम दण्डनीय हुने भएकाले 20 वर्ष मुनिका विवाहहरू विवाह दर्ता नहुने र स्वत बदर हुने भएकोले सचेत भई अरूलाई सचेत गराई कानूनको पालना गर्न गराउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। 18 वर्ष मुनिका बाल बालिकालाई निकृष्ट प्रकारको श्रम जस्तै मोटर, ग्यारेज, होटल, कारखाना, गिट्टी, बालुवा, घरेलु कामदार, गाडीमा सहचालक नलगाउन साथै धूम्रपान, मध्यपान, सुर्तीजन्य पदार्थको खरिद बिक्री गर्ने कार्यमा बाल बालिकालाई संलग्न नगर्न हुन हार्दिक अनुरोध छ। यदि कसैबाट कानून विरूद्धका कार्यहरू भए वा गरे गराइएमा कानून बमोजिम कार्यवाही हुने बेहोरा सम्पूर्ण गाउँवासीहरूलाई जानकारी गराइन्छ।
3: अध्यक्ष गणेश चौधरी, बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँपालिका जानकी कैलाली।
5: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस्तो?
6: मै नै जाइँ,
5: उहाँ आफन अनुहार बिगड़के घर से बाहर नै निकर्थ्यो।
6: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइदो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई तो तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब ही जाए।
0: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
7: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। नेकपा एमाले के सुरपश्चिम प्रदेश के 9 जिला के पार्टी के जिला इंचार्ज तो गिलबा पार्टी संगठन शुद्धिकरण जनपरिचालन तथा आगामी राजनीतिक गतिविधि हे समेत प्रभावकारी बनैना तमाम जिला के लाख जिम्मेवारी बाटफाट करल जना गिलबा। एमाले के कैलाली जिला के इन्चार्ज में कमला कुमारी ओली कंचनपुर में कृपराम राणा दारचुलाह में गणेश सिंह ठगुन्ना आसाम में छपत बहादुर बोहरा तथा दलदुरामा पठान सिंह बोहरा हे उम्मीदवार जिम्मेवारी समेत तो गिल्बा उस्तहका बाजुरा जिला इन्चार्जमा लाल बहादुर थापा बैतडीमा लीलाधार भट्ट दोतीमा चक्रबहादुर मल्ला बझाङमा अफिलाल ओखेडे हे समेत जिल्ला इन्चार्ज तो गिल्बा पार्टी के जिल्लागत संगठन थप सक्रिय प्रभावकारी बनैना उद्देश्य के साथ ऊ जिम्मेवारी बाटफाट करल जना गिल्बा। लाओ नियुक्त इन्चार्ज संक्रमण के सम्बन्धित पार्टी मा जिल्लामा समेत पार्टी संगठन विस्तार कार्यकर्ता परिचालन तथा राजनीतिक गतिविधि के समेत समन्वय गर्न बताइल्बा। सुरपश्चिम प्रदेश स्तरीय 16 राष्ट्रपति रनिंग सेल प्रतियोगिता के उपाधि कैलालीमा जितल्बा कलशे डलदुरामा आयोजित प्रदेश स्तरीय राष्ट्रपति रनिंग सेल प्रतियोगितामा 58 पदक सहित कैलाली उपाधि जितल के हो। कैलाली 32 स्वर्ण 17 रजत 9 कांस्य पदक जितल बताइल बा। ओ सरकार से आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजट में मासिक 50 यूनिट से ढेर विद्युत खपत करना मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्न निर्णय से सर्वसाधारण उपभोक्ता प्रभावित हुन देख परलवा। क्रायसी प्रायोजनमा विद्युतीय उपकरण प्रयोग के अभ्यास समेत हुन क्रममा रलक उपभोक्ता अंकरण 5% भ्यात लगेना प्रावधान से उपभोक्ता अंकरण समेत चिड़ायल केल नहीं हो कि मुलुक के विद्युत खपत विस्तार योजना है फिर समेत प्रभावित पर्न देख परलवा। अर्थमंत्री डॉ सोनी मोहगले से सांसद के दोनों सदन में पेश करलक आर्थिक विधेयक में दफा 55 मार्फत समेत मूल्य अभिवृद्धि कर एन 2082 में समेत ई संशोधन करके अंतिम उपभोग हुए समेत ई एनओ ईएन अंतर्गत बनलक नियम बमोजिम के कर लागू करना 5% दर से कर निर्धारण करके कर लगना और असूल ऊपर करना उल्लेख करल बा। ये समाचार संगे खोज खबर रॉयल जेना से पहले खबर के मुख्य शीर्षक फिर से कर्णाल नदिया के किनार में सामुदायिक बनुआ नदिया के कटान के चपेटा में वर्षेनी 100 हेक्टर बनुआ क्षेत्र कटान हुई थी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी टीकापुर के नगर सभापति के इंचार्ज में रविन्द्र विष्ट चयन सामुदायिक पुस्तकालय टीकापुर के अध्यक्ष में जगन्नाथ प्रसाद रिमाल टीकापुरमा नगर प्रहरी सवारी चालक फायर फाइटर और सरसफाई कर्मी आग लागि नियन्त्रण सम्बन्धी सामग्री तालिम प्रदान रानी चमरा कोलरिया सिंचाई अन्तर्गत के वनलक्षित भण्डार गृह संचालक समिति के शपथ ग्रहण बक्लक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार
0: 12 बजे मध्याह्न खबर सुन सकबी या बेके खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई सामुदायिक रेडियो टीका पर एफएम सुनते रहे।

0: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्म टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार।
1: टिचिङ हस्पिटलबाट एमडी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फ्यामिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ।
0: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू:
1: दीर्घ रोगीहरू, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थाइराइड, दम, सीओपीडी,
0: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा,
1: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार,
0: महिलाका समस्या, गायनोलोजिकल समस्या, गर्भावस्थाको जाँच,
1: सामान्य रोग, ज्वरो, खोकी, पेट दुखाइ लगायतको उपचार,
0: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन,
1: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
0: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर।
1: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म।
0: सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80 0008 र 9825 63 77 72।
2: बुढल्ला सुन्टो कि नै वहाँ नन्दी भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
3: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
2: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका अनसे के कतरा सुघर बनाकन ल बाटी
3: ए ले ले ठिके बा चल हाली भात वात खाइ हौ जाइका हौ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
2: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फे बना जाए मोबाइल नंबर 9864 41208 ओ 9846 39261।
4: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज।

0: ए रोक रोक रोक
1: के भयो किन कराएको यस्तो
0: दाई यस्तो पनि हुन्छ र 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे
2: इन्सिलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड यति मात्र होइन लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभिजको फ्री एक्सेस पनि
1: हो र
0: हो नि इन्सिलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड
3: ओहो आजै यो सुपर भ्यालु प्याक एस्ट्रिक 1-3 ह्यास डायल गरी वा एनसेल एप मगाई लिनुहोस् एनसेल नेपालकै लागि
4: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो
5: कोट पेट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान कैना जबरदस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैठे नाई देना बोले नाई देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई
4: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठी ओसीएमसी स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी
5: अठवा पैसा नई लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी ओ सीधा अदालत में थे जय से जय
4: हिंसा अपने फैनाई करी यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाए सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमबाट जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: ni bayafunu tafwa dasta dramana rasarasa angnama lana pugase hidaraha
1: ekka gatina hamra sayog kaikhal denti bati den motorcycle ghumaka dharne karina
0: bitha bitha dramana rasarasa marpa cha baithai ko ekjana dramana pakar ka baithi upachar kendra sam pugaiber brahmya behos hisek na pila korse pasa se pakar ka baitha par thaka
2: dramana agar hina kai kamai pakar ka baitha tu sunil ji अपना देशी मोटरसाइकल स्वयं सेवक हुई कारण सर्पदंशक दरम्यान उपचार केंद्र लेना सजिलो हुई बा
0: एम्बुलेंस और चार पहिया सवारी से मोटरसाइकिल जो सब कुछ हम सजिला पा दी था पटना ठमाटा मई असक मोटरसाइकिल स्वयं सेवक तरफ से बाट सजिला से वो छत्ता पा जिला से दरम्यान चार पहिया का सवारी साधन में सजिलो हुईना मेरकर सुचा कर लगभग एंटी भेनम हुईला उपचार केन्द्र में ले जाए पड़ता
1: अपना हुआ जैने करी ना मई द्वान लगा करके ला दे
0: वहां न कटलक सपक फोटो खींचना बाकी कर से उठेलन बिहार फोटो खिला से सपक चिन्ह सजिलो बैठा उपचार करना से सजिलो बैठा
2: फोटो मोर मोबाइल में बा अब हमरा जा जाई नहीं तो ढील हुई जी
3: सपक डस डायल कर से उपचार कला मोटरसाइकिल चालक व मोटरसाइकिल स्वयं सेवक से सहयोग ली बिरमने आना अपना वो मोटरसाइकिल चालक का बीच में सुरक्षित हिना मेर से बैठाई वो लगभग एंटी वेनम उपलब्ध होना सर्पदंश उपचार केन्द्र में ले जादारी सप्पा कटलसे मोटरसाइकिल चालक बनाई लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र पुगाई जीवन रक्षा करी
4: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेबसाइट www.snakebitenepal.org मा हेर सेर्दिथा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: पर कान्छाशालाको बिहाको न्युज आएको छ कसो त जाने विचार छ कि नै त
7: आफ्ना कान्छा भाइको बे नगइकन पनि भएन जाउँ भने भयाको मंगलसूत्र पन भाँचि गयो
6: यो टिका लागि त सामुएल जोलस बनेको बरु अहिले जाउँ एक दुई दिनमा त फ्याक्टै बनाइहाल्ला छन् त्यहाँ
7: आज त सन्त्याका बाले मनकै कुरो हर्यो त बाई जाउँ
8: सामुएल ज्वेलर्स सुनचारीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै सुनचारी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ प्रोप्राइटर तिहारी सिंह सुनार सम्पर्क नम्बर 9868 4412 98486 39261

0: कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल ले रही था, कब्बू झले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस टपाटी गटीलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जलम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई, कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगला दीदी कटरा से गोर झोला आन लाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल हेरे थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
0: ला फेरी यो गाड़ी ले धोखा दिने भयो जहिले पनि बैटरी कै समस्या बैटरी कै समस्या यो टीकापुर मा पनि बैटरी कहाँ पाइएला टेंशन में भाई मत अब
4: भाईलाई ठाई रहिने छ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टर में लाग्ने बैटरी पनि सुपट मूल्य में टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्य में पाइन्छ नि
0: ए यो टीकापुर में पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
4: कहाँ हुनु भाई टीकापुर जमरापारी छ नि संजय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
1: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
5: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रांड को मोटरसाइकल ट्रैक्टर बस ट्रक टिप्पर जेसीबी मा लाग्ने सम्पूर्ण साइज का टायर सुपथ मूल्य में पाइन्छ संजय ट्रेड एंड सप्लायर्स जमरापारी टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
4: संपर्क नंबर 091560470 र मोबाइल नंबर 9848528

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर डाय

0: कबू लड़का कॉपी हेरा कैठ कबू पेंसिल हेरा कैठ कबू झोले फटा कैठ बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गया झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लबाती ना कबू लड़का कॉपी हेरी थी ना कबू पेंसिल हेरी थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनंद झोला दस का टस बातिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गई संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: आइगई क्या? आज त पहिला नोकरीको पहिला महिना तनखा खाइकन आएकी होली मेरी चेली।
1: तनखा खाइकन होइन बुवा, तनखाले भोलिका दिन कि ढुक्क पारिकन आएकी छु। हो भने बुवा, पहिला महिनाको तनखा पाउने बित्तिकै मैले आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाएकी छु। सिटिजन लाइफमा त कसा राम्रा राम्रा योजना रहेछन्। भाइका लागि बाल भविष्य योजना, तमिरे आमाका रिटायरमेन्टका समयका लागि घातक रोग सुविधा सहितको पेन्सन योजना, वाछी मेरा भविष्यका लागि सेभिङ ग्रोथ प्लान पनि रहेछ। तर पहिला महिना तनखाले सबैको एकैचोटि हर्न सम्भव भएन, त्यसैले अहिले आफ्नो जीवन सुरक्षित गरिकन सुरु गरे।
0: ठिक गरिबा, आफैबाट सुरु गर्नु पर्दछ। हाम्रा पालामै त यसो गर्नु भन्ने थाहै थिएन, तर तमीहरूका पुस्ताले त समय अनुसार स्मार्ट डिसिजन लिइकन भविष्य सुनिश्चित गरिकन अगाडि बढ्न लागेका छ।
1: बुवाका अनुभव र मेरो सचेतना मिलिकन हाम्रो परिवार झिक सुरक्षित हुन्छ त, होइन बुवा? सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स, जहाँ भरोसा र भविष्य सँगसँगै हिटो छ। झिक्क कुरा थाहा पाउनका लागि हाम्रा बिमा गर्ने मान्छे नजिकैका शाखा कार्यालय वा फोन नम्बर 01-5970-217 नि सम्पर्क गरे।
2: आई बुढल्ला, सुन्तो कि नै वा नन्दी भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइना उनी पट्टा नि पैना त
3: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
2: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान्छे कि कत्रा सुघर बना कन ल बाटी
3: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आऊ जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर, प्रोप्राइटर बिहारी सिंह सुनार।
2: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए, रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए, वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 98684-41208 ओ 98486-39261। आई हो बड्डो, घर कहिया सिज्जैबो? पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल।
4: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो नी करत का कहीं ना हो का
2: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटरा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफी ओस्ट बनी हो ना वट्र फिर पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ रा घूम जाए ता था पाए।
5: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
6: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98-48-51-43-26।
7: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: नहीं कमी सर
1: आओ आओ तू पायलट से आईना माता झील कर दो था संजू कुछ समस्या तो नहीं हुई
0: कुछ नहीं हुई सर पायलट के 15 सफवा रख लू सर लग के घूमत रहते हूँ जैसे चेयर से लग में तो हलचल नहीं करें मोर सपो का इकट्ठा पहनो तो पायलट जाके
1: मोर सपो है ना चलेना तो नहीं चलेगा ना
0: नहीं चलेगा सर
1: विद्यार्थी भैया बाबू मुरा से कह रहा हूँ मोर सपो देखो कर से भैया ना चलाए नहीं बिठा सपो मूला से फिर वाकर में रहा बीस असर नहीं करत खाना नहीं हो जीती हाँ मुआल सप्पा मुआल देख पड़ना सप्पा है ना नंता हाँ सारे पकड़ा नहीं भी
0: सर नौ सप्पा देखना से क्या करना
1: सप्पा मुआल देख पड़ना से थे जात से मुआल नहीं रह सकत अथवा मुला कुछ देर पास आसम थे सप्पा दस सकत वह उससे मुआल अवस्था में फिर सप्पा हाथ से चलाए नहीं भी डेंटन तो इतना माल अच्छी ले चला था मुआल नहीं मुआल कहीं का जाना से भी था
2: मुआल सरपन से सावधान रही मुआलवा मार्गी सपोहना पकड़ना व खेलना जिन करी मुलक कुछ बेर बासम की सपवा दस से था संभव हुई सम सबको फोटो खींची व पहचान कला विज्ञापन से संपर्क करी
3: सर्पदं से संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदं से उपचार केंद्र कहाँ बाक पता मेरे लाख आधिकारिक वेबसाइट www.snakebitenepal.org में हेर सकता
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: जानकी गाउँपालिकाको गाउँवासीहरूमा हार्दिक अनुरोध
6: नेपालको संविधानको भाग 3 मौलिक हक धारा 39 अन्तर्गत बालबालिकाको हकको व्यवस्था भएको र बालबालिका ऐन 2075 बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन 2056 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 समेतलाई कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि गाउँपालिका तत्पर रहेको हुँदा 20 वर्ष मुनिका किशोर किशोरीहरूले विवाह गरी गराएमा भागे भगाएमा दुवै पक्ष कानून बमोजिम दण्डनीय हुने भएकाले 20 वर्ष मुनिका विवाहहरू विवाह दर्ता नहुने र स्वत बदर हुने भएकाले आफू सचेत भई अरूलाई सचेत गराई कानूनको पालना गर्न गराउनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ साथै बालबालिकालाई निकृष्ट प्रकारको श्रम जस्तै मोटर ग्यारेज होटल कारखाना गिट्टी बालुवा घरेलु कामदार गाडीमा सहचालक आदिमा नलगाउन 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि निकृष्ट श्रममा नलगाउन धूम्रपान मद्यपान सोतेजन्य पदार्थको खरिद बिक्री गर्ने कार्यमा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्न हुन र अनिवार्य विद्यालय भर्ना गराई नियमित पठन पाठन कार्यमा संलग्न गर्न हुन हार्दिक अनुरोध छ कानून विरूद्धका कार्यहरू भए वा गरे गराए कानून बमोजिम कारवाही हुने बेहोरा समेत सम्पूर्ण गाउँवासीहरूलाई जानकारी गराइन्छ
5: अध्यक्ष गणेश चौधरी बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँपालिका समिति

0: कबू कापी रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, का कना हो बाबा फिर होस्ट पार्टी गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कापी हरी थी ना कबू पेंसिल हरी थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: ए भन्दै सबै कुरा पाउने रहेछ लु भन् त भाउ के पाउँछ त्यहाँ
4: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर ढक तराजु घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ
5: ए एभ्रीलाको कुरा गरेको हो त्यो त मलाई पनि थाहा छ त्यहाँ त ग्यास ग्यास चुला नलकाका सामान किला काँटा सबै पाइन्छ नि
6: त्यति मात्र होइन त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ
3: भन्दै सबै कुरा पाउने रहेछ
7: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतोल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला ट्रेडर्स
8: विशेष ढक तराजु डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला ट्रेडर्स
9: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर
7: प्रोपराइटर पुष्पराज देवकोटा सम्पर्क फोन नम्बर 98484-48673 र 98148-0204

0: परिवारमा सबै बिरामी
1: आखिर स्वस्थ रहन स्वस्थ व्यवहार पनि त अपनाउनु पर्यो तर यति हुँदाहुँदै पनि सबै एकला सुकाए हुन्छ र
0: कहिले कोही बिरामी कहिले कोही बिरामी म त दिक्क भइसक्यो कसो कालले छिटो नलाग्यो
2: होइन चाइनाजो माइलो के बर्बर बर्बर कराइरहेको छ के भएको छ तलाई
0: हेर्नु न साह्रै समस्या पर्यो क्या कहिले के रोग आउने कहिले के समस्या आउने म त हैरान भइसकेँ छोरो उस्तै बिरामी छ स्कुल जान पाएको त्यत्रो दिन थन्किया छ बा त्यत्रै बिरामी सबै हैरान भने म पनि यो पेटको बिरामीले कस्तो हुन्छ भोक लाग्या लाग्यो हुन्छ खानै सक्दैन
2: तेरी माइला यति सानो कुराको लागि यति धेरै चिन्ता लिनुपर्छ त्यसको लागि त हाम्रो टिकापुरमा रहेको चण्डीमाई मेडिकल स्टोरमा गए त भइहाल्यो
3: हजुर स्वदेशी विदेशी औषधिहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन् साथै समय समयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पनि उपलब्ध छन्
4: सम्पर्क स्थान चण्डीमाई मेडिकल स्टोर ठकरला रोड टिकापुर कैलाली
5: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछ से सुरु करल मने घर सिज्जा सेक्ल
6: अरे का करुरी बुढिया कठुआ खोजत खोजत परे सान हो गिल बाटू मिल्बो मिल्बो नि करत का कैना हो का
5: मिस्तरान बर्जन उकन घर हेरो ना अट्टा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्टफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो न कबू कहूर घुम जाए तो था पाए
7: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रैलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
6: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426

0: पहिला नोकरीको पहिला महिना तनखा खाइकन आएकी होली मेरी चेली।
1: तनखा खाइकन होइन बुवा, तनखाले भोलिका दिन कि ढुक्क पारिकन आएकी छु। हो भने बुवा, पहिला महिनाको तनखा पाउने बित्तिकै मैले आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाएकी छु। सिटिजन लाइफ मित कसा राम्रा राम्रा योजना रहेछन्। भाइका लागि बाल भविष्य योजना, तमिरे आमाका रिटायरमेन्ट समयका लागि घातक रोग सुविधा सहितको पेन्सन योजना, वाँचि मेरा भविष्यका लागि सेभिङ ग्रोथ प्लान पनि रहेछ। तर पहिला महिना तनखाले सबैको एकैचोटि हर्न सम्भव भएन, त्यसैले अहिले आफ्नो जीवन सुरक्षित गरिकन सुरु गरे।
0: ठिक गरिबा, आफैबाट सुरु गर्नु पर्दछ। हाम्रा पालामै त यसो गर्नु भन्ने थाहै थिएन, तर तमीहरूका पुस्ताले त समय अनुसार स्मार्ट डिसिजन लिइकन भविष्य सुनिश्चित गरिकन अगाडि बढ्न लागेका छ।
1: बुवाका अनुभव रे मेरो सचेतना मिलिकन हाम्रो परिवार झिक सुरक्षित हुन्छ त, होइन बुवा? सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स, जहाँ भरोसा रे भविष्य सँगसँगै हिटो छ। झिक्क कुरा थाहा पाउनका लागि हाम्रा बिमा गर्ने मान्छे नजिकैका शाखा कार्यालय वा फोन नम्बर 01-5970-217 मि सम्पर्क हर्या।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
3: मै नै जाइ, उहाँ आपन अनुहार बिगर्थे घर से बाहर नहीं निकर्थु।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था, वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: काती रहिथा कभी पेंसिल रहिथा कभी झोले फटा काजी था का कना हो बाबा फिर उस तो बातें गटीलो ठाउं से झोला आनले से तो लड़का सामान नहीं है रे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरा भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कही था कभी पेंसिल हेरा कही था कभी झोले फटा कही था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं सीख थो
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लन वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गया झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गया झोला उद्योग में रट गया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: कती रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटा का आज का कना हो बाबा फिर उस टपाटी गटिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गो झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर हुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: ला फिर यो गाड़ी ने धोखा दिने भयो जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला टेन्सनमा भए म त अब
4: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
3: ए यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
4: कहाँ हुनु भाइ टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
0: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको दुई वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
3: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
5: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्र्याक्टर बस ट्रक टिफर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ संजय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
4: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 98485518828।
6: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछौ छोरी
7: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुहोस् न लाउन कस्तो रहर लाग्छ
6: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले
7: मेरो खुतुर्के छ नि आमा मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सक्यो नि
6: कुरा राम्रै हो छोरी तर कसकोमा जाने हो त
7: न्यू अछाम जाल्पा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ अस्ति नै हेरिसके मैले त
5: न्यू अछाम जाल्पा देवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टिकापुर न्यू अछाम जाल्पा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गरगहनाहरू माइली तिलहरी हार झुम्का छड्के तिलहरी बाला चुरा चन्द्रमा जन्तर चन्द्रहार इन्डियन मंगलसूत्र औठी सिक्री बिनारसनका गरगहनाहरू पाइन्छन् साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन् अछाम मंगलसैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार फोन नम्बर 98688147979 98247025 अछाम मंगलसैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार गोपाल सुनार फोन नम्बर 98247028225

0: ए भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ। लु भन त भाउ के पाउँछ त्यहाँ?
1: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर, ढक तराजु, घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ।
2: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो? त्यो त मलाई पनि थाहा छ। त्यहाँ त ग्यास, ग्यास चुला, नलकाका सामान, किला काँटा सबै पाइन्छ नि।
3: त्यति मात्र होइन, त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट, घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ।
0: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ।
4: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतौल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला ट्रेडर्स।
5: विशेष ढक तराजु, डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला ट्रेडर्स।
6: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर।
4: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा। सम्पर्क फोन नम्बर 98484463 र 98164602204।
7: आई विवेक, उठ्यान घाँस झपा सोच दिन्छ हो। फुटबल बन्द गरक विवेक खन उहाँ कहाँ हुन्छन्? उहाँ झप्क्यारो नाचा कहाँ?
8: ओ हेर त उहाँ सब भागल पागल कि का हो विवेक खन? एक हरी स्कूली फुटबल यहाँ रही लगता हन का जैसा पो आप
9: देवाली मेन का सब काटल मुना मुना
7: विवेक जिना क्या संघारू देव सांस होकर झूनी चल का बैठो हमरा तुह ना स्वास्थ्य केंद्र पुगेबी आई पारस तू घर डाबू हो ना मोटरसाइकिल ले खाए कहो तो
8: हो विवेक खन यहाँ खुला ठाव मसुताई झूल झलंग झुलंग निकरा खन मारी काटी ले वही है ना हॉक दिए तू किली में काट ला खल सुची बा काटल ठाव ना छुआ चलाई न्यूज ना
7: अब मैं विवेक खाना सजिल हुई ना कही खाओ आकर कसके लग पीटी तान धीरा धीरा खोल दे तू वो घरी वो मुंडी फेंक हार दे हम
8: बिठा रोशन मैं यह जाला विवेक का जूता वो मजा धीरा धीरा निकाल दे
7: झूठ जसिन सापन का दसाई खतरनाक नहीं रहा समय में जो उपचार कराई से क्लसे दिखा सपन का कातल मन यहाँ फेब बचाई से जिठा सखुआ कटलक मन यहाँ झट्टा से झट्टा उपचार केंद्र में पुगाई से क्लसे वही हना भारी क्षति हुना से जोगाई से जिठा
10: विश्वास लगनाओ सही जानकारी पाइक लाख लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैफ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज snackbite.nepal.org में जाख आवश्यक जानकारी लिए शेख जिठा।
11: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
12: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 वाणिज्य संकायमा भर्ना खुल्यो।
13: यस क्षेत्रकै अग्रणी तथा गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083 लागि कक्षा 11 अन्तर्गत वाणिज्य संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुला गरिएको बेहोरा सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक तथा शुभेच्छुक महानुभावहरूमा जानकारी गराइन्छ। विद्यालयमा अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै माध्यमबाट अनुभवी तथा दक्ष शिक्षकद्वारा आधुनिक प्रविधि मैत्री र व्यावहारिक शिक्षण प्रणाली अन्तर्गत अध्ययन अध्यापन गराइनेछ।
12: पढाइ हुने विषयहरू
13: अनिवार्य नेपाली,
12: अनिवार्य अंग्रेजी,
13: सामाजिक गणित,
12: ऐच्छिक लेखाशास्त्र,
13: ऐच्छिक वित्त शास्त्र,
12: ऐच्छिक अर्थशास्त्र,
13: कम्प्युटर विज्ञान,
12: भर्ना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू,
13: भर्ना फारम वितरण जेठ 1 गतेदेखि,
12: भर्ना सुरु जेठ 3 गतेदेखि,
13: कक्षा सञ्चालन जेठ 25 गतेदेखि,
12: पठन पाठन समय बिहान 6 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म। सीमित सिट भएकाले समयमै भर्ना सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीका लागि 091-560-738, 091-561-446, 98-48-43-31-79 र 98-48-43-36-77।
13: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजीक 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपनी हुकन स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने हुकरा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट के संग अनलाइन में www.tikapureFM.org मोबाइल एप हम पात्र और नेपाली पात्र में फेसिन टीहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से अतिरमस्ते 20 ग्राम से ढेर बढ़ी हिरोइन सहित 3 जना पकड़ाऊ। 17 प्रहरी के जवान सहित 2 जना बेपत्ता। मनसून के कारण सुदूरपश्चिम में 33,000 से ढेर बढ़ी नागरिक प्रभावित हुई अनुमान। और राष्ट्रीय सभा में से 2 विधेयक पारित। कैलाली के गोदावरी नगरपालिका 2 अतेरिया में से 20 ग्राम से ढेर बढ़ी हिरोइन सहित 3 जना पकड़ा पोलबाट लागू औषध बिक्री वितरण हुईल। सूचना के आधार में इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेती मसे खटला टोली शुक्रवार बिहान के कोठा मसे छाप मल रही। छापा के क्रम में कंचनपुर के भीमदत्त नगरपालिका 6 के 43 वर्षीय धर्मानंद भट्ट, वहां के 17 वर्षीय छाये स्मिता भट्ट, गोदावरी नगरपालिका 2 के 44 वर्षीय गोपाल तिमसेना लागू औषध सेवन करती रह अवस्था में फैला पल रही। तलाशी कलक महक्र लुकी छुपाई ढलक 20 ग्राम 240 मिलीग्राम हिरोन जसिन धूर पदार्थ बरामद हुई। प्रहरी जनेलवा पकड़ाउ पर्नमा नियन्त्रण मले के थप अनुसन्धान हुई रहला। इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेती के प्रमुख डीएसपी हीरा सिंह महरा के नेतृत्व में लागू औषध विरूद्ध कलकी पहिलो भारी अपरेशन हुलक प्रहरी जनेलवा। डलेलधुरा के पशुराम नगरपालिका 5 में शीर्ष 17 प्रहरी के 1 जवान सहित 2 जना बेपत्ता हुई। जिला प्रहरी कार्यालय डलेलधुरा के अनुसार बेपत्ता हुई में परिगांव स्थित 17 प्रहरी बल के बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी में कार्यरत प्रहरी जवान ओम प्रकाश पुन मगर और स्थानीय 56 वर्षीय तीर्थ बहादुर थापा मगर हलबाट। प्रहरी न्याय परीक्षक डीएसपी वरूण बहादुर सिंह के अनुसार शुक्रवार से संपर्क विहीन हुईलक दुनू जना मामा भांजा नंदा पर्ना बोटिलो महाकाली लद्दिया के किनार वहां उग्र प्रयोग कलक ट्यू फिला पलक लद्दिया में बक्टीरहल हुई सेकना आशंका सहित खोजी शुरू कलक वहां जानकारी दिल। यह वर्ष के मनसून के कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश 33,000 से ढेर बढ़ी नागरिक प्रभावित हुए अनुमान कलबाट। आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्रालय सुदूरपश्चिम के अनुसार भरिया पहिरो डुबान जसिन विपद मसे प्रदेश 7,603 घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुई सकना आकलन कलबाट। मंत्रालय की विपद सम्पर्क व्यक्ति जनक धामी के अनुसार गरीब 33,227 जना नागरिक विपद के जोखिम में पर्लबाट। प्रदेश सरकार और सरकार वाला निकाय संभावित क्षति न्यूनीकरण के पूर्व तैयारी प्रति कार्य योजना तीव्र बनेलबाट प्रभावित हुई स्थान और घरदूर के पहचान कर सकना छुट्टे कार्यविधि बनाके जिम्मेवारी बाटफाट करके धामी बोटिलोट भौगोलिक अवस्था के कारण सुदूरपश्चिम के जिला में विपद के स्वरूप फरक फरक रहना देगिलवा। ए वर्ष तरह के कैलाली और कंचनपुर मनसून में से सबसे ढेर बढ़ी प्रभावित हुई अनुमान कलबाट। जहां लद्दिया कटान डुबानो बरिया मुख्य चुनौती रहना बा पहाड़ी तथा हिमाली भाग के डुबान के जोखिम में कम हुए से फिर पहरो के संभावना उच्च अलग मंत्रालय के निर्देशन बा। विगत में जथाभावी सड़क निर्माण और कमजोर भू बनोट के कारण सामान्य वर्ष में समेत भारी पहरो जनाकलक अनुभव के आधार में यह वर्ष फिर पहाड़ी जिला में उच्च सतर्कता अपनी धामी बोटिलोट। मंत्रालय के तथ्यांक अनुसार कंचनपुर में 7,132, कैलाली में 6,195, डोटी में 4,820, बाजुरा में 3,776, बैतड़ी में 3,362, डलेलधुरा में 3,108, बझांग में 1,774, अछाम में 1,602 और दार्चुला में 1,467 जना प्रभावित हुई अनुमान कलबाट। खोज खबर में घरी विश्राम विश्राम पास फिर से विष्णु त्रिवेदी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
3: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टिकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टिकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
0: विश्राम पाछा फ्रिसे स्वागत बा प्रधान दुई बालेन्द्र शाह हाल होल्डिङ सेन्टरमा अलग वास्तविक सुकुम्बासी नेपाल सरकार जग्गाकी व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट कलबाट प्रतिनिधि सभाकी आइतबारकी बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टी सांसद आर्यन राईकी प्रश्नकी जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री शाह काठमाडौँ उपत्यका मर्लक खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बैठिरहल नागरिकमा औरठा मसाना काम गर्ल वा आफ्नो स्थानीय सरकारमा हुलसेनै संघ सरकार सुकुम्बासी उहाँमा स्थानान्तरण गर्के होल्डिङ सेन्टरमा धरनाग्रह कलक स्मरण गरेलबाट उहाँकै देशभर कैयौं फिट जमीन नै हुलक वास्तविक सुकुम्बासी जग्गाकी व्यवस्थापन गर्न आग्रह कलश फेरि सम्बोधन नै हुलक उल्लेख गर्दै हाल उहाँ अनुसार काम गर्न बोटिरोबाट सुकुम्बासी जमीन पाइपनाका कि सरकार हो हाम्रो पार्टी कि मान्यता हो यी उहाँको पाइपना कैके हाल काठमाडौँ उपत्यकामा बैठकका कि प्राथमिकता के संघ हटेलक फिर सन्दर्भ विगत बढ़िआइन उहाँको के घर डुबानमा पर्ना स्वास्थ्य सरसफाई लगायत क्षेत्रमा समस्या रहलक ओहो सम्बोधन गर्न उहाँको व्यवस्थापन कलबाट प्रधानमन्त्री शाह उहाँ बोटिलोबाट उहाँकै सुकुम्बासी जग्गा व्यवस्थापन गर्न करके काम गतिरहल हुइटिरहल जानकारी गरेलबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह विदेशमा रहलक नेपालीकै मताधिकार प्रयोगबारे आगामी निर्वाचनमा का गर्नका के ओहो बारेमा अध्ययन गर्न बोटिलोबाट प्रतिनिधि सभाकी आज बैठकमा स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन पुछलक प्रश्नकै जवाबमा प्रधानमन्त्री शाह विदेशमा रहलक नेपालीकै मतदान गर्न दुई ठो नेपाली दूतावासमा जाकि मत देना हो र मोबाइलमा से मत देना विकल्प होइन बोटिलोबाट मोबाइलमा से मत दिलक प्रभावित होइसकेन जोखिममा रहलकैकै विगत से नै अल्छलक्कैके लग्न दूतावासमा जाके मत देना हो कि प्रविधि मैत्री बढ़ना हो कैके यही सम्बन्धमा नेपाल सरकारकै छलफल कैके आगामी चुनावमा का गर्न हो कैके प्रधानमन्त्री शाह मुटिलोबाट वा करलाक अध्ययन गर्न विषयमा अध्ययन हुन बा खोज खबरमा फेरि विश्राम विश्राम पाछा फेरि विश्वन्तीय सामुदायिक रेडियो टीकापुर
4: आइहो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछा से शुरू करल मने घर सिजार सेक्ल
5: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
4: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए।

0: ना जेएनजी आन्दोलन के विषय में अलकमान पदाधिकार आयोग के प्रतिवेदन कार्यान्वयन करपना तथा सभा में सांसद उकलक उठलक विषय में सरकार जवाबदेहपना कति सभा व सरकार के ध्यान आकर्षण करे राष्ट्रीय सभा की अवरो बैठक काल सोमवार 1:15 में बैठना हुई यह समाचार संघ खोज खबर बढ़ेल जिना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से एक चो अतिरिया मस्ती 20 ग्राम से ढेर बड़ी हीरोइन सहित 3 जना पकड़ाओ सशस्त्र प्रहरी की जवान सहित 2 जना बेपत्ता मनसुख के कारण सुदूरपश्चिम में 33,000 से ढेर बड़ी नागरिक प्रभावित होना अनुमान और राष्ट्रीय सभा में से 2 विधेयक पारित लीजा बुकला खोज खबर रख रहा प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी ने धन्यवाद डीटी बुकला खोज खबर से मैं सीता चौधरी विदाई दू अगर पास 6 बजे की खोज खबर सुनना सीख ली सामुदायिक रेडियो टीका पूरा फिल्म सुनती रवि राम राम
1: नरेश दादू मैं तो अपना फोन आई थी कि दौड़ के आ गई नो है बहुती कहाँ बाती
2: वो गोंदे में सुतल बाती बाबू चोली न भरी
1: हौजी कहाँ से काटू अपना हाना अरे आदर पावे तो सफा सुखर बनाई लो बाती तर के पार्टी तू जा रहा अपना है ना
3: यहाँ पोली बुक कट लगो नानी अपना एम्बुलेंस है ना खबर तो करना बाटा कटा देर मको आप ना हो
1: ना से बहुजी हमरा बाटी अपना है ना कुछ नहीं हुई दिन गुआरा है ना दिन से रेख दी वो नरेश दादू एम्बुलेंस में ना समय लागे से था नगर के मोटरसाइकिल बाक लगे वहीं में बैठा कर बहुजी है ना सर पर उपचार केंद्र ले जी ना तैयारी करो पड़ल
2: ये बेला तक खेला जात फिर दिए न्यू इतना स्वयं सेविका दीदी
1: हो अब ना ठीक कली डॉक्टर और निकट सम जनमेन कुछ से खवाई नहीं हुई
4: सपवा कट्टी की सहज वातावरण बनाए लाख सपवा कटलक अंगाना स्थिर बनेना प्रयास कर पठा तम्म कस गेलक लुगा गरगहना घड़ी पेटी मुंडी बाकल से फफल करा दी गेरमे अपेले से जन समस्या बिना हुए कोशित गेरमे न शांत रह सहयोग कर पठा क्यूमने सपवा कटलक ठाव से ऊपर दौड़ी लिए कस खबना के कठा असिक कर्ण से लक्त संसार में समस्या हुई सकता जेहीले करबेल सपवा दशलक शरीर को भाग काट खा फाक पौना अवस्था थे ऐसे ठा
5: सर्पदंग से संबंधी भर पर्द वो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंग से उपचार केन्द्र कहाँ बाकी था पत्ता लगाए लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर सेव दिठा
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
7: अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
8: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठभन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
7: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका
8: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
7: अब त म ढुक्क
9: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भार
8: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टिकापुर कैलाली
10: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM 101 मेगाहर्ज

0: अरे साली अब डिलीवरी भी तेरा मखा सकनो माला गुड़िया ले लूँ
1: अब किन मते किन सकनो खा सकनो हेरे
0: क्या क्या दाईगा हूँ
1: सब ते क्या बात है
0: हीरो नजर दाईगा होना साली आप
2: ठीक बात कर लिया यार हीरो
0: अरे साली मेला की हीरो ने जरूर बोले कहाँ मेला खेला बाबा साली
1: नहीं नहीं भाटू टू कल मैं बसंत नहीं काटे सकूँ जो दाई मेरा
0: चलो साली।

0: आइपु ढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दे भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनेना पट्टा नि पैना त
1: अनि गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिले नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाकान छ कि कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261
2: कतई भूख छे
3: कतई बाड़ी
4: कतई पहिरो जलवायु परिवर्तनले मानव जीवनमा चोट पार्छ गहिरो
5: त्यसैले वृक्षारोपण गरौं जंगल बचाऊ भूक्षयबाट जमिन जोगाऊ
2: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम द्वारा जनहितमा जारी सन्देश

विद्युत महाशुल्क भुक्तानी सम्बन्धी सूचना 2083 असार 1 गते से टीकापुर वितरण केन्द्र हो लम्की युनिट कार्यालय अन्तर्गत के संचालित विद्युत महाशुल्क काउन्टर बन्द गर्न लक्ष्य र लकोर्से विद्युत महाशुल्क अनलाइन माध्यम से भुक्तानी गर्न सक्कु ग्राहक महानुभाव मुकरण यह सूचना से जानकारी कराएती। विद्युत महाशुल्क अनलाइन भुक्तानी गर्न समय बिहान के 8 बजे से रात के 12 बजे सम्म। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र टीकापुर कैलाली।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलू
0: उहे मारे तो तू हिन वहाँ पठाई दो यहाँ है ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाड़ खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417
0: घर त जेन्टेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
4: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाई काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
0: ए हो त कहाँ पाइरहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका
4: कहाँ हुनु भाइ टीकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
0: अब त म ढुक्क
5: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
4: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टीकापुर कैलाली

बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरमहेन जानकारी कराई थी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरमहे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटा का आज था, कहा का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन लसे तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लन वो तो कहा टीकापुर में रलक रख गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनंद झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जेबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकल झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर रामप्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: जाओ माया डीजल गाड़ी मा
4: बदमाश

0: का हुई कमल अहन बुक खाइल बाट उठ
1: एरी ने काका आई फुला टूरे बारी में गेल रही तबो का देली बीस निका देवी की कह के लेके आयल बाटू
0: सबको कटक बीस तक उपचार कर सर्वदम सब उपचार केंद्र में ले जाए पठा कहूँ कमल भाई वहाँ दक्ष तथा तालीम प्राप्त चिकित्सक हूँ दिखाया सबको कटलक हो कि नहीं हो के पट्टा लगा कर सर्वदम सब उपचार में प्रयोग है ना एंटी वेनम से उपचार कर
1: सर्पदम से उपचार केंद्र के विषय में मैं फिर सुनल तो रहू
0: सर कुछ दिन कही आया ना तुरंत उपचार केंद्र ले जा डाली नेपाल सरकार सर्पदंशक उपचार कर एंटी वेनम समेत निःशुल्क उपलब्ध करे था चिंता नहीं पड़त
1: भाई ना तब ना तू इन कुछ फिर नहीं हुई मैं एम्बुलेंस आना फोन कर सकले बात
0: एम्बुलेंस आपू में समय लागे के था मर छवा संदेश मोटरसाइकिल में बैठा कर तुहन उपचार केंद्र में ले जा दी रे बाबू संदेश बाहर आता
2: सर्पदंश प्रभावित जिला में बेरोमेन का समय में जो उपचार के खर जान जोगिना उद्देश्य ले सर्पदंश उपचार केन्द्र संचालन में बा ई उपचार केन्द्र में सर्पदंशक उपचार निःशुल्क हुई था सापन का कटाई मनन कम